0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
8: राजा मसाला।
9: Across the country, he has tracked the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: There is a transition taking place, Mr. Ponnanna, and you know we're hearing that there will be a change.
8: As news just coming in, a CBI team has reached the house of Giribala, who is of course the mother-in-law of late Trisha. The CBI may arrest her today. This comes close on the heels of the Madhya Pradesh High Court rejecting the anticipated bail that had earlier been granted to Giribala Singh. A CBI team has now reached her residence. In fact, while cancelling the anticipated

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: There is a transition taking place, Mr. Ponnanna, and you know we're hearing that there will be a change of guard by the end of this week. Any light you can throw on that?
3: No, you see, as I said, it's hard for me to say anything. It is the Chief Minister's decision. Siddaramaiah ji is one of the tallest leaders that Karnataka has seen. He has been Chief Minister for 8 years, so it is most. Appropriate and necessary, if you ask me, that these decisions, sensitive decisions, come straight from him rather than we go around.
2: Mr. Ponnanna, you're not just another Congress MLA. You know, you are part of the Siddaramaiah inner circle. You've been an advisor to him. You know, he depends on your advice. You've spent a lot of time with him today, crucially as well. What next for the Chief Minister? What next for Siddaramaiah after this transition? You know, he has a towering legacy. He has a huge base that will be very curious.
4: Well, it's a heavy news day, and news now coming in from Madhya Pradesh, where the High Court late yesterday night delivered the order squashing the anticipatory bail that had earlier been granted to former judge Giribala Singh, who is one of the accused in the death of her daughter-in-law, Twisha Sharma, slamming the Sessions Court that had granted this anticipatory bail. The Madhya Pradesh High Court said that the Sessions Court ignored crucial evidence and allegations in the case. Considering the severity of the allegations, the High Court then quashed the anticipatory bail that had been granted to Giribala Singh. The court also noted that Twisha had leveled allegations of harassment against not just her husband but also her in-laws. The CBI team reached today morning Giribala Singh's house, and now there is speculation that she may be arrested. She will be detained for questioning about the case, and if she doesn't cooperate, an arrest could be imminent. The option of surrendering before the court still remains open for Giribala Singh. By the way, soon after her anticipatory bail was quashed by the Madhya Pradesh High Court, images emerged of Giribala Singh today morning going out of her house and feeding stray dogs, leading to considerable outrage. In fact, the family of Twisha Sharma has demanded that Giribala Singh be arrested ASAP.
5: क्या कहेंगे सर, अब तक जो हुआ है, जो प्रक्रिया हुई है, उस पर क्या कहेंगे?
6: सबसे पहले मेरा सभी मीडिया वाई एनडीटीवी का, पूरी टीम का, एनडीटीवी की, देव मैडम का, तनुश्री मैडम का और अपना हरप्रीत मैडम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पूरी एनडीटीवी टीम के लिए कि जिन्होंने हमारे संघर्ष में साथ दिया हमारा और हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का, चीफ जस्टिस साहब का, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कि हम आज न्यायिक प्रक्रिया के एक कदम आगे बढ़े हैं। कल बेल कैंसिल हुई है, एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हुई है, लैंडमार्क डिसीजन है। बेटी का जैसा नाम था त्विशा, तिमिर को भगाने वाली उषा की पहली किरण, तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ अंधकार है सारे सिस्टम में, वहाँ वो अंधकार दूर हो करके रहेगा। ये पहला कदम है, लड़ाई बहुत लंबी है और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमें यह सहयोग भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा ताकि हम एक न्याय तक पर पहुँचें। न्याय जो है, ट्रस्ट जो है, आना ही चाहिए, बाहर आना ही चाहिए। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक हम इस पूरे संघर्ष में हम ढंग से जो है अपनी बेटी के खोने का दुख भी नहीं मना पाए। अभी हम इस लड़ाई में जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। आप देखेंगे हमारे जीवन में इतना बड़ा जो है वो आ गया है, गैप आ गया है, उसको कोई पूरा नहीं, उस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। पर यह है कि उसको न्याय मिलना चाहिए, इसी आशा के साथ हम सब लड़े, शक्ति दे भगवान हमें कि हम आगे बढ़ते रहें।
5: सर, ये सच बात है कि जो भी पूरी प्रक्रिया हो रही है वो तुषा को न्याय दिलाने के लिए हो रही है। और जिस चीज़ का आपने जिक्र किया कि जो गिरिबाला सिंह थी उनकी जो एंटीसिपेटरी बेल थी उसको कल हाई कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है, जिस चीज़ को लेकर आप लोग सबके सामने आए, जिसके लिए आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तुषा को न्याय मिलेगा, ये जो कल कोर्ट का फैसला आया है उससे कितनी उम्मीद सर आप लोगों को जगी है कि तुषार को न्याय मिलेगा?
6: बिल्कुल, बहुत उम्मीद जगी है, बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा भरोसा है कि सीबीआई इस ट्रुथ को बाहर निकाल के लाएगी, जो छुपा दिया गया था वो सब बाहर आएगा, और आने वाले समय में हमारा संघर्ष और तेज रहेगा, हम आगे एक एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे सभी लोगों के सहयोग के साथ में। ये बहुत ही अच्छा जो है निर्णय आया है, और उम्मीद है आगे हम न्याय की तरफ, प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे, और भरोसा जगाए, आज पब्लिक का भरोसा जगेगा कि न्याय से, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये एक चीज़ कायम हो गई है। आज इसने एग्जांपल सेट किया है इस डिसीज़न ने कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, हमें बहुत इस बात का संतोष है।
7: कल विस्तृत सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ बिंदुओं को बड़े ही गंभीरता से लिया है, जैसे कि मृतिका उषा शर्मा के शरीर में 7 एंटीमार्टम इंजरीज पाई गई हैं, ये गंभीर अपराध की ओर संकेत करती है। दूसरा कि गिरिबाला सिंह के द्वारा नोटिसेस प्राप्त होने के बाद भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम को वांछित सहयोग नहीं दिया, जो कि शर्त थी उनको अग्रिम जमानत दिए जाने की, उसका भी उल्लंघन होता है। दूसरा, जो भी व्हाट्सएप चैट हैं उनका समग्र अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसमें एक बात स्पष्ट रूप से निकल करके आती है कि त्विषा शर्मा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
8: A four member team of the CBI, including a lady officer, is inside the residence of Gribala Singh, and they are questioning her inside the High Court on Tuesday tore apart the anticipatory bail granted to Gribala Singh in the sensational Tushar Sharma's death case, observing that the trial court had ignored crucial evidence, failed to properly appreciate witness statements, and overlooked serious allegations surrounding the mysterious death of 33-year-old women inside this house in Bhopal. In a scathing 17-page order, Justice Dev Narayan Mishra quashed the anticipatory bail granted by the Bhopal Sessions Court.

0: turns, but the major detail remains the same. Siddaramaiya has decided to resign. He has already told his cabinet colleagues. It's D.K. Shivakumar who's all set to take over as the Chief Minister of Karnataka. Many would say that this should have happened long back, but remember, for the Congress party to make this decision even now, it's been quite a challenging task, because Siddaramaiya is not just any other chief minister. He's a mass leader. He commands a large section of votes from the OBC community. He himself is a strong Kuruba leader, and he's seen as a socialist leader who has a lot of influence on votes, especially from rural and poor parts of Karnataka. So it wasn't an easy decision for the high command, and it is still working out.
1: Absolutely. Okay, it's all a story in motion. 2:30 is when he meets tenders his resignation at the governor's office. Vasudha reporting that the governor might be headed back to Bengaluru later this evening on a special flight. 3 p.m. press conference by Siddaramaiya. 4:30, he's supposed to leave for Delhi. Will there be any change in that now that the governor is coming back? We don't know just yet. But this is a story in motion. It's a fluid, dynamic situation. Constant updates. I'm handing it back to the studio where Divya takes you through some updates on the Twisha Sharma case, another case that we're keeping our eyes on NDTV. Over to you, Divya.
2: Thank you so much, Shiv. Let's get us, the latest update when it comes to the Twisha Sharma case. The CBI visited the residence of the mother-in-law, Giribala Singh, this morning. This comes after the Madhya Pradesh High Court quashed the anticipatory bail granted to the former judge who is accused in the death of her daughter-in-law, Twisha Sharma. The Madhya Pradesh High Court, in its order, said that the Sessions Court ignored crucial evidence and allegations that were being made in the case. Twisha's father, in fact, hailed the cancellation of the anticipatory bail and expressed confidence in the probe that is now being led by the CBI. The CBI may arrest Giribala Singh in the case, and the option of surrendering before the court still remains open for the mother-in-law of Twisha Sharma. Let's just also get Harpreet Kaur, who's joining us live outside the residence of Twisha Sharma, the marital home of Twisha Sharma, where the mother-in-law lives, Giribala Singh. Harpreet, get us all the details that you have for us, because, there have been certain observations that were ignored earlier, which have been highlighted in court while, cancelling that anticipatory bail, quashing that anticipatory bail of the mother-in-law. And, it is all pointing and signalling towards perhaps her arrest.
3: बिल्कुल देखिए कल देर रात ही जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला करीबन 12 बजे के बाद अपलोड हुआ है कि अग्रिम याचिका जो जमानत को लेकर लगाई गई थी वो यहाँ पर जो रद्द कर दी गई है उसके बाद से ही हलचल और तेज हो गई। इस वक्त मैं गिरिबाला के घर के सामने ही मौजूद हूँ। देखिए गाड़ी अंदर खड़ी की गई है सीबीआई की टीम की जो सदस्य हैं उनके तरफ से, क्योंकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीबीआई की जो टीम है वो गिरिबाला को अरेस्ट करेगी और इसी गाड़ी में लेकर वो भोपाल एम्स पहुंचेगी। देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो अंदर की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाएंगे। अंदर जो है गिरिबाला के लिए अंदर जो गाड़ी है वो खड़ी की गई है, क्योंकि जिस तरह से समर्थ को लाया ले जाया जा रहा था उस वक्त भी काफ़ी जो है मीडिया सवाल करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस बल लगाना पड़ता था। अब से बस कुछ देर पहले ही यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी संख्या में कटारा हिल्स थाने का जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है और अंदर अब जो लास्ट फाइंडिंग्स यानी पूछताछ हैं वो गिरिबाला से की जा रही है। हालांकि समर्थ और गिरिबाला के जो बयान हैं उनमें कहीं कुछ जो है वो गड़बड़ी मिली है कि गिरिबाला कुछ बता रही है घटना के वक्त का माजरा और समर्थ ने यहां पर कुछ बताया, अब इसी को लेके जो है वो लास्ट यहां पर पूछताछ उससे की जा रही है। इसके साथ ही यहां से टीम सबसे पहले सीबीआई की गिरिबाला को लेकर एम्स मेडिकल के लिए जाएगी और उसके बाद सीबीआई कोर्ट में उसे यहां पर पेश किया जाएगा। तो फिलहाल मेडिकल के लिए एम्स ले जाने से पहले गिरिबाला ने अंदर सीबीआई को बताया है कि वो सीनियर सिटीजन है, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की उन्हें प्रॉब्लम है, उन्हें कई तरह की और तकलीफें हैं शारीरिक, और जिसके चलते उन्होंने सीबीआई को गिरफ्तार करने या उनके जो वकील हैं रिमांड पर ना लेने की यहां पर उनसे बात की है। लेकिन फिलहाल वही जो मेडिकल फॉर्म्स हैं वो बताया जा रहा है कि अंदर भरवाए जा रहे हैं, उन पर साइन यहाँ पर गिरिबाला के करवाए जा रहे हैं। पुलिस बल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। गाड़ी अंदर खड़ी की गई है, ये वही गाड़ी है सीबीआई टीम की, जिसमें अब से कुछ देर बाद ही गिरिबाला को ले जाया जाएगा पहले एम्स और उसके बाद इसे सीबीआई कोर्ट में पेश करके अब सीबीआई गिरिबाला को रिमांड पर ले सकती है। जी
2: हरप्रीत कौर, हमें ये पता है कि समर सिंह जो त्रिशा के हस्बैंड थे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाट द एसआईटी हैड

0: Now that the CBI has taken charge of the case, you know, हमने इतनी allegations सुनी जो mother in law है from making allegations कि वो drugs ले रही थी, उसको you know psychological issues थे, so much and so on and so forth. अभी तक investigation में क्या भार आया है in terms of the marks on her body as far as the autopsy report is concerned?
1: बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि समर्थ एसआईटी को भले ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, बातचीत में सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन ये सीबीआई है, सीबीआई की टीम ने कल उसे अपनी कस्टडी में लिया है और उसके बाद ही पुलिस उसे लेकर यहाँ घर पहुँची थी. 3 घंटे तक उसे यहाँ पर पूछताछ उससे की गई थी. और देखिए समर्थ की अगर बात की जाए, गिरीवाला की बात की जाए, तो वो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी, ट्विशा मानसिक रूप से वो परेशान रहती थी, उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है. लेकिन जो तथ्य वो यहाँ पर बता रहे हैं वो सबूत यहाँ पर पेश नहीं पाए हैं. उन्होंने जरूर वो डॉक्टर्स के जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं जिन पर उसका साइकोलॉजिकल इलाज चल रहा था वो जरूर यहाँ पर उन्होंने बताए हैं, लेकिन ये इलाज क्यों और कब से चल रहा था ये नहीं बता पाए. ये सामने आया है कि शादी के बाद से ये इलाज भोपाल में चल रहा था, यानी उसे शादी के महज 5 महीनों में ही इतना परेशान कर दिया गया कि उसे एक मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत पड़ी. यानी कि अब तक जिस चीज़ को ये लोग बता रहे थे कि ट्विशा मानसिक रूप से परेशान थी या मानसिक रूप से उसे कोई परेशानी थी या इस तरीके की तकलीफ थी, वो तकलीफ भी उसे शादी के बाद हुई, तो ये पल्ला भी उनका यहाँ पर भारी पड़ा है कि आखिर ऐसी यहाँ पर क्या यातनाएं मानसिक और शारीरिक तौर पर उसे दी गई कि उससे एक मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए जाना पड़ा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भले ही फर्स्ट रिपोर्ट में हैंग आया हो कि फांसी के फंदे से उसकी मौत हुई है, लेकिन उसके शरीर पर मल्टीपल इंजुरीज मिली हैं. और इस बात का भी परिजनों का दावा है कि समर्थ ने इस घटना से पहले उसके साथ बुरी तरह मारपीट की है. इस संभावना से भी इनकार नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है. ब्लंट फोर्स यानी कि किसी तेज चीज से उसके शरीर पर वार किया गया है और उस चीज के जो वार के निशान है वो उसके शरीर पर है. फिलहाल सेकंड पोस्टमार्टम जो दिल्ली एम्स की टीम ने किया है उस रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है. लेकिन कुल मिलाकर अब समझा जा सकता है कि सीबीआई और कानून का शिकंजा गिरीबाला और समर्थ के परिवार पर कसता चला जा रहा है. एक के बाद एक जो उनके झूठ हैं वो सामने आते नजर आ रहे हैं. इस वक्त भी सीबीआई की टीम सुबह 10:20 पर गिरीबाला के घर पहुंची थी और अभी तक यानी कि 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है टीम अंदर पूछताछ कर रही है. गिरीबाला ने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया है कि उसे गिरफ्तार ना किया जाए या उससे अभी पूछताछ ना की जाए, लेकिन मेडिकल उनके जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर भरवाए जा रहे हैं. इसके साथ ही समर्थ को कल 3 घंटे तक लेकर यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुँची थी. इन 3 घंटों में ना सिर्फ समर्थ से पूछताछ की थी बल्कि टीम के सदस्यों ने घर के हर उस कोने से साक्ष्य जुटाए थे, उस सबूत जुटाए थे जहाँ पर ट्विशा का आना जाना था. इस घर की 3D मैपिंग भी यहां पर की गई है ताकि जो समय बताया जा रहा है 12 मई को ट्विशा की मौत का, कि उसकी मौत इतने बजे हुई थी, 3rd फ्लोर पर जो जिम एरिया है वहां से नीचे लेकर आने तक, एम्स ले जाने तक जो कहानी पूरी गिरीबाला और उसके बेटे समर्थ ने पुलिस को बताई है वो भी अब कहीं उल्टी नजर आ रही है. उसमें भी जो समय की कोई चूक है वो यहाँ पर नजर आ रही है. तो फिलहाल पूरे
0: तरीके से take us to the details as far as the investigation is concerned, you know, pointing to those marks that were on the body of Twisha, also the, you know, bizarre statements that were made by the mother-in-law, particularly the conversation she had with the brother, which the brother recorded, and you know, absolutely those recordings that have gone viral now as to the kind of weird questions that the mother-in-law was asking her own daughter-in-law.
2: Yeah, and that's what the High Court also took cognizance, and in a 17 pages scathing order, High Court has also, because Harpreet was just mentioning and you asked a question about the postmortem, and I quote from the order, the High Court highlighted that the postmortem report revealed not just death by hanging, but 6 antemortem injuries to Tusha's body, including injuries on her arm, finger and head, and specifically noted that these injuries could not have been caused while taking down the body from ligature or transporting her to the hospital. So a very important observation by the High Court, which is also mentioned in the order sheet by Justice Devnarayan Mishra.
0: Right, Anurag, when we talk about the kind of bizarre statements that have come about, those allegations, those claims that were being made by the mother-in-law, particularly when she's having that conversation with the brother of Twisha, take us through that very conversation and the kind of insinuations that were made at the time.
2: Yes.

0: There was an audio of reportedly from that was recorded on April 22nd. I mean, and in that particular audio, there were several allegations, you know, made by her mother-in-law, Giribala Singh, about her character, about, you know, the relationship with son and other allegations, which, you know, and that's what the High Court took cognizance of. In fact, the government lawyer, the SG and the Advocate General also pointed out that she held a press conference on 18th of 18th of May, and then she made some allegations on Trisha. So everything is recorded in that order also, all the press conferences, and you know, as as well as the media interviews which Giribala has given
1: right.
0: to different channels as well as different publications.
1: Right, absolutely. We also have Harpreet Kaur, you know, still with us, joining us from outside the residence of Trisha, her marital home, where the mother-in-law is being questioned. Harpreet, agar hum kehen ki, you know, the media coverage, jo public opinion hai, they have been the ones responsible to get the case as far as it has. But when we talk about the WhatsApp chats, that is what has really tightened the case and made the case very, very strong. Agar hum kehenge, agar wo WhatsApp chats नहीं होती जो वो यू नो दे आर बीइंग यूज्ड एज एविडेंस इन दिस पर्टिकुलर केस. आप बताइए व्हाट्सएप के जो मैसेजेस जो फैमिली के बीच में फ्रेंड्स के बीच में शेयर हुए थे त्विशा और डिस्क्राइबिंग पर्टिकुलरली हर मदर इन लॉ एंड हर हस्बैंड, उनके बारे में बताइए.
2: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो सबूत था वो ट्विशा का और उसकी माता पिता के बीच का वो चैट था. शादी 12 दिसंबर 2025 को हुई थी और उसके बाद से ही करीबन एक महीने बाद से ही ट्विशा लगातार अपने ससुराल वालों को, जिसमें समर्थ और गिरिबाला को लेकर, अपनी माँ को शिकायतें कर रही थी. इस बीच लगातार कई बार ट्विशा नोएडा अपने घर भी गई थी, लड़ाई हुई थी यहाँ पर, और उसके बाद समर्थ पहुँचा था या फिर गिरिबाला ने फ़ोन किया था, माफ़ी मांगी थी कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, और उसे लेकर वापस आ गए थे. ये सारी चीज़ें उस चैट में कही गई थी. देखिए जिस दिन 12 मई को ट्विशा की मौत हुई थी, 15 मई को एफआईआर हुई थी, पुलिस ने 3 दिन बाद मामला दर्ज किया था, और मामला दर्ज तब करना पड़ा था जब लगातार जो परिजन है वो थाने में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे. उन्होंने वो चैट यहाँ पर दिखाया था कि किस तरीके से ये चैट सामने आया है कि वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी, परेशान उसे किया जा रहा था, और यहाँ तक कि उसके कोख में बच्चा किसका है, इसे लेकर यहाँ पर सवाल किए जा रहे थे. इस वक्त अनुराग सर मौजूद है मेरे साथ. अनुराग सर, ट्विशा का जो चैट था वो चैट भी एक बहुत बड़ा सबूत साबित हुआ है.
3: जी बिल्कुल, न सिर्फ वो जो व्हाट्सएप चैट्स थे बल्कि जो उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था 18 तारीख को, तो बार बार ये बात उठी कि आखिरकार उन्होंने ऐसे कौन से आरोप लगाए, क्यों लगाए. और अब देखिए अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि फिर से हलचल कुछ तेज़ हो रही है, पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद है और अंदर अभी भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं और गाड़ियाँ लग चुकी हैं. तो ये व्हाट्सएप चैट्स के अलावा जो प्रेस को उन्होंने संबोधित किया, जो आरोप उन्होंने अपने बहू पर लगाए, मृत बहू पर लगाए, इन सारी बातों का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया. इन सारी बातों के मद्देनज़र जो फैसला जस्टिस देवनारायण मिश्रा का आया है, उसमें कई अहम बातें, उसमें एक बात यह भी है कि खुद गिरिबाला सिंह, जिनके घर के बाहर हम खड़े हैं, वो साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट रही हैं, तो ऐसे में वो सबूत.
1: वेल यू नो अनुराग एंड हरप्रीत, वी विल कीप कमिंग बैक टू यू फॉर मोर ऑन दैट. वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ऑन द अदर साइड वी गोइंग टू गेट यू आवर कंटीन्यूअस कवरेज फ्रॉम कर्नाटका, द गेम ऑफ थ्रोन्स इन कर्नाटका, एंड द न्यू चीफ मिनिस्टर हु इज गोइंग टू बी यू नो दैट अनाउंसमेंट दैट वी हैव रियली बीन waiting for. All that and a lot more on the other side. Stay with us.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
2: What's the drama?
3: Full of these people.
2: Kolkata trap.
4: The highest number of voters.
5: Tamil Nadu votes decisive.
6: Tapra Tapri ka mahal hai. Udhampur patrao kya gaya ha.
7: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.

0: who is perhaps no more now. Talk to us more about what we can expect. We'll be also learning that CBI will take Giri Bala to AIIMS for medical examination, and then she will be produced in front of the court in Bhopal. Like what Tejshri also said, two things important, that she will be interrogated by the CBI, and there will also be some kind of understanding if there's any kind of tandemness and same statements given out by Samarth and Giri Bala, Anurag.
1: Yeah, this is what I have said, that she'll be taken to AIIMS for medical examination, and after that she'll be produced before the court. So this is one point. And as you pointed out, that while cancelling her anticipatory bail, the High Court made several observations, including that she is an expert in cyber crime and crime management also, and that's why there were apprehensions that she will try and destroy or tamper with the evidence, because remember that premises is still with Giri Bala. For good 14-15 days she was staying there. So there were apprehensions by the family members of Tvisha that she will try and tamper with the evidence. In the bail plea, when the state government moved to the High Court, they also made certain statements saying, when the police called her for investigation, she never cooperated. They summoned her 3 or 4 times, but she never cooperated. So these were the grounds on which the High Court cancelled her anticipatory bail, which was given by the court here in Bhopal.
0: Right, Anurag. Tejshri, of course, like what Anurag said, that the CBI also said that there are chances that Giri Bala Singh will try to malign and tamper the evidence as well. Later today, she will be produced in Bhopal court. But talk to us about the list of charges that are there against Giri Bala, the mother-in-law of Tvisha, because we do know that after the incident came to the surface and after... All right, I have hamare saath rahiye Tejshri. We have Tvisha's father on the phone line with us. Giri Bala Singh arrest ho gaye hain. आप क्या कहना चाहते हैं? आपका पहला क्या रिएक्शन होगा?
2: मेरा पहला रिएक्शन है, बहुत बहुत धन्यवाद सीबीआई साहब का. आज उन्होंने ये सेट कर दिया और ये दिखा दिया है न्याय व्यवस्था जो है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, नो बडी इज अबव लॉ, और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है और ये बहुत ज्यादा संतोषजनक बात है. वेरी सेटिस्फैक्ट्री.
0: राइट, क्योंकि सीबीआई ने भी कोर्ट को कहा है कि जो गिरी बाला सिंह है, शी ट्राई टू मलाइन द एविडेंस एंड टैम्पर द एविडेंस, एंड देयर वाज आल्सो कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ योर डॉटर व्हिच शी डिड आफ्टर हर डेथ. बट आफ्टर दिस बिग न्यूज, सीबीआई ने आपको पहले भी कहा कि देयर विल बी फ्री एंड फेयर प्रोब. अब आप क्या आपको लगता है दैट यू आर क्लोजर टू जस्टिस राइट नाउ?
2: हमें पूरा भरोसा है हमारी सर्वोच्च न्याय सीबीआई के ऊपर, जो हमारा सर्वोच्च संस्थान है और प्रेस्टीजियस संस्थान है, हम इस पर गर्व करते हैं. और उन्होंने पहले भी ऐसे काफी केसेस को ब्रेक किया है और मुझे उम्मीद है इस बार भी जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा और लोगों की उम्मीद बढ़ेगी न्याय के प्रति.
0: तो 16 डेज, मई 12 को त्विशा डाइड, एंड आफ्टर 16 डेज गिरी बाला सिंह हैज नाउ बीन अरेस्टेड. ऑफ कोर्स पहले लगा कि वो टैम्पर कर सकती हैं एविडेंस, शी कैन यूज हर पावर एज अ फॉर्मर रिटायर्ड जज. बट व्हाट वुड योर मैसेज बी राइट नाउ टू एवरीवन हु स्टूड विथ यू एंड आल्सो टू ऑल द पीपल हु वेंट अगेंस्ट यू?
2: देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि न्याय जो है की प्रक्रिया बहुत कठिन है और आगे लड़ाई लंबी है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि घबराए नहीं, और सब मिलजुल करके जब फाइट करते हैं तो दुश्मन कितना भी बड़ा हो उसे जीता जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है. हमने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है आप सभी लोगों के सहयोग से, सभी देशवासियों के सहयोग से, और हमने आज इस मुकाम पर पहुंचे, अचीव किया है हमने. और भरोसा है हमें, अपनी एजेंसीज पे भी भरोसा है, फक्र है हमें, हमारे जुडिशियल सिस्टम पर भी भरोसा है, और जरूर न्याय मिलेगा.
0: ऑफकोर्स जब ये पहले केस आया था तब आपके और आपके वाइफ ने भी कहा था दैट कि आप चाहते हैं कि ये केस भोपाल से बाहर निकले, सेकंड पोस्टमार्टम होए और फिर सीबीआई टेक ओवर भी, जो अब सीबीआई टेक ओवर के बाद समर्थ सिंह की अरेस्ट हुआ है एंड अब गिरी बाला सिंह की भी अरेस्ट हुआ है. क्या अब आपको लगता है कि हम जस्टिस की तरफ पहुँच चुके हैं? आगे आपकी क्या डिमांड्स होना चाहेंगे? वॉट वुड योर फ्यूचर डिमांड्स?
2: हमें

0: फेयर की डिमांड थी जो ये साल तक होती है, दिख रही है, सारी चीजें हैं और हमें भरोसा है अपनी जांच एजेंसीज पर और न्याय प्रक्रिया पर, सब चीज निकल के आएगी, सारी चीजों को फैक्ट्स को बाहर लाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और यही हमारी कहना है।
1: आप आगे और क्या चाहते हैं? समर सिंह अरेस्ट हो गए हैं, वो सीबीआई के साथ है, इंटेरोगेशन चल रही है उनकी,
0: जांच की प्रक्रिया है, अभी तो बहुत सारी चीजें आनी है, बहुत सारी लड़ाई है आगे, तो अभी हमारा हम ऐसा कोई कमेंट कर ही नहीं सकते हैं। और फिर हम एक सभ्य नागरिक है, हम अपने सीबीआई का सम्मान करते हैं और हम की ऐसे किसी भी कार्य से बचेंगे जिसके लिए उन्होंने बोला है कि आप टिप्पणी ना करें, इसमें जांच में बाधा न बने, तो हम ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जांच अपनी तरीके से चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि समय पर ये चीजें पूरी होकर के सामने आएंगी, जनता के सामने आएंगी।
1: मिस्टर शर्मा, आप फाइनली कब रियलाइज करेंगे कि अब बस हम जीत चुके हैं ये पूरा केस? ऑफ कोर्स आपकी बेटी वापस तो आ नहीं पाएंगी, बट
0: बिल्कुल जो केसेस लगे हैं, जिन धाराओं में केस लगे हैं, उस धाराओं में हमें जीत मिले और इनको जो सजा हो वो एक जीत की तरह पढ़ेंगे। अभी पहला कदम है, अभी बहुत लड़ाई, कानूनी लड़ाई बाकी है, जो लड़ेंगे हम और आप लोगों के सहयोग से लड़ेंगे, जनता के सहयोग से लड़ेंगे, सब हम लोग मिलजुल करके एक नजीर कायम करेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे।
1: ये केस के बाद बहुत सारी लड़कियों भी आपके, दे वर ऑल्सो रैलिंग फॉर त्रिशा, आपके लिए, सबके लिए, आप उनको क्या कहना चाहते हैं आज गिरिबाला सिंह के अरेस्ट के बाद?
0: कहते हैं कि ये ऐसा हम आगे देखना चाहते हैं फ्यूचर में कि कोई बच्ची कोई इस तरीके से शिकार ना बने और इसके लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे।
1: जी शर्मा जी हमारे साथ रहिए।
0: जी
1: Okay, we have more breaking news coming in. Giribala was arrested after more than 6 hours of questioning. Sources telling us 2 eyewitnesses confronted during interrogation today. And after 6 hours of grilling by the CBI, Giribala Singh was arrested. I want to go across to Anurag Srivastava, Twisha's family lawyer. Mr. Srivastava, Giribala Singh has been arrested after 6 hours of questioning. Samar Singh is in CBI custody. We, of course, spoke with Mr. Sharma, Twisha's father, and he seems to be happy and saying that justice is finally closer, but your reaction right now and what perhaps will be the future course of action?
2: See, Giribala's arrest was a much natural thing to happen after whatever happened yesterday in the High Court, and with all the details which have been put up by the Advocate General and Solicitor General based on the case diary, it was much obvious that the facts which till date were coming out, the actual facts are much more serious and they indicate towards a more serious offense. So after yesterday's rejection of her bail, anticipatory bail, it was but natural that CBI at some point today would definitely arrest her. CBI had handed over some pointers to the court across the board and mentioning why Giribala's custodial interrogation is necessary. So definitely they have opposed the anticipatory bail. The anticipatory bail order was quashed. Today they interrogated, grilled her, and we were just waiting for the time that the news comes up that she has been arrested. I feel, my gut feeling as a lawyer is that the offense is much more serious and CBI definitely will get something more in the proper investigation which they conduct now.
1: Right, Giribala was, of course, confronted with 2 eyewitnesses and she was arrested right now. But what will be, from Twisha's side, the case has, of course, been going on. What would be the next course of action when it comes to Twisha finally seeking justice with, of course, both the accused, the mother-in-law and the husband in the CBI custody? And, of course, we've heard how the CBI also assured Twisha's family that there will be a free and fair probe. But what are your next steps? What are you looking at?
2: See, we are at present looking at a very unbiased, fair and independent probe by CBI. We have full confidence in the CBI and we definitely know that CBI would do its job to the perfection, and the real incidents of what all happened on 12th will come out in CBI's investigation. Definitely the

0: Welcome back and shifting our focus to other big news. After several hours of questioning, the CBI team has now arrested Twisha's mother-in-law, Giribala Singh, from her residence with charges of destroying evidence. Ex-judge Giribala Singh was charged with destroying evidence in the case as the CBI team took Giribala Singh for medical examination as well. And earlier in the day, I spoke with Twisha Singh's father, who hailed CBI's arrest of Giribala Singh. Take a listen. We have Twisha's father on the phone line with us. Giribala Singh arrest ho gaye hain. आप क्या कहना चाहते हैं? आपका पहला क्या रिएक्शन होगा?
1: मेरा पहला रिएक्शन है, बहुत बहुत धन्यवाद सीबीआई साहब का. आज उन्होंने ये सेट कर दिया और ये दिखा दिया है न्याय व्यवस्था जो है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. नो बडी इज अबव लॉ. और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है और ये बहुत ज्यादा संतोषजनक बात है. वेरी सेटिस्फैक्ट्री.
0: राइट, क्योंकि सीबीआई ने भी कोर्ट को कहा है कि जो गिरीबाला सिंह है, शी ट्राई टू मलाइन द एविडेंस एंड टैम्पर द एविडेंस एंड देयर वाज आल्सो कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ योर डॉटर व्हिच शी डिड आफ्टर हर डेथ. बट आफ्टर दिस बिग न्यूज, सीबीआई ने आपको पहले भी कहा कि देयर विल बी फ्री एंड फेयर प्रोब. अब आप क्या आपको लगता है दैट यू आर क्लोजर टू जस्टिस राइट नाउ?
1: हमें पूरा भरोसा है हमारी सर्वोच्च न्याय सीबीआई के ऊपर, जो हमारा सर्वोच्च संस्थान है और प्रेस्टीजियस संस्थान है. हम इस पर गर्व करते हैं और उन्होंने पहले भी ऐसे काफी केसेस को ब्रेक किया है और मुझे उम्मीद है इस बार भी जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा और लोगों की उम्मीद बढ़ेगी न्याय के प्रति.
0: तो 16 डेज, मई 12th को त्विशा डाइड एंड आफ्टर 16 डेज गिरीबाला सिंह हैज नाउ बीन अरेस्टेड. ऑफकोर्स पहले लगा कि वो टैम्पर कर सकती हैं एविडेंस, शी कैन यूज हर पावर एज अ फॉर्मर रिटायर्ड जज. बट व्हाट वुड योर मैसेज बी राइट नाउ टू एवरीवन हु स्टूड विथ यू एंड ऑल्सो टू ऑल द पीपल हु वेंट अगेंस्ट यू?
1: देखिए, मैं तब से यही कहना चाहता हूँ कि न्याय जो है की प्रक्रिया बहुत कठिन है और आगे लड़ाई लंबी है. पर मैं ये कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि घबराए नहीं और सब मिलजुल करके जब फाइट करते हैं तो दुश्मन कितना भी बड़ा हो उसे जीता जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है. हमने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है आप सभी लोगों के सहयोग से, सभी देशवासियों के सहयोग से, और हमने आज इस मुकाम पर पहुंचे, अचीव किया है हमने. और भरोसा है हमें, अपनी एजेंसीज पे भी भरोसा है, फक्र है हमें, हमारे जुडिशियल सिस्टम पर भी भरोसा है और जरूर न्याय मिलेगा.
0: ऑफकोर्स जब ये पहले केस आया था तब आपके और आपके वाइफ ने भी कहा था दैट कि आप चाहते हैं कि ये केस भोपाल से बाहर निकले, सेकंड पोस्टमार्टम होए और फिर सीबीआई टेक ओवर भी, जो अब सीबीआई टेक ओवर के बाद समर्थ सिंह की अरेस्ट हुआ है एंड अब गिरीबाला सिंह की भी अरेस्ट हुआ है. क्या अब आपको लगता है कि हम जस्टिस की तरफ पहुँच चुके हैं? आगे आपकी क्या डिमांड्स होना चाहेंगे? व्हाट वुड योर फ्यूचर डिमांड्स बी?
1: हमें फ्री एंड फेयर की डिमांड थी जो मुझे साल तक होती है, दिख रही है, सारी चीजें हैं और हमें भरोसा है अपनी जांच एजेंसीज पर और न्याय प्रक्रिया पर. सब चीज निकल के आएगी, सारी चीजों को, फैक्ट्स को बाहर लाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और यही हमारी कहना है.
0: आप आगे और क्या चाहते हैं? समर्थ सिंह अरेस्ट हो गए हैं, वो सीबीआई के साथ है, इंटेरोगेशन चल रही है उनकी,
1: जांच की प्रक्रिया है. अभी तो बहुत सारी चीजें आनी है, बहुत सारी लड़ाई है आगे, तो अभी हमारा, हम ऐसा कोई कमेंट कर ही नहीं सकते हैं. और फिर हम एक सभ्य नागरिक हैं, हम अपने सीबीआई का सम्मान करते हैं और हम की ऐसे किसी भी कार्य से बचेंगे जिसके लिए उन्होंने बोला है कि आप टिप्पणी ना करें, इसमें जांच में बाधा न बने, तो हम ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. जांच अपनी तरीके से चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि समय पर ये चीजें पूरी होकर के सामने आएंगी, जनता के सामने आएंगी.
0: Well, let's tell you more about all that has happened in the Twisha death story so far. 16 days after Twisha died, the mother-in-law, Giribala Singh, has now been arrested. Remember, CBI grilled Giribala for 6 hours before her arrest. Sources also tell us that Giribala Singh was confronted with 2 eyewitnesses. Charge 1, destroying evidence, tampering evidence. Charge 2, concealing evidence as well. The case has now been registered under Dowry Prohibition Act so far. All right, we have some breaking news coming in on this very story. The CBI team will now produce Giriwala Singh in court tomorrow in Bhopal. The CBI team has informed Principal District Judge Manoj Kumar Srivastava regarding the arrest of Giriwala Singh. CBI officials reached Giriwala Singh's residence at around 10:30 a.m. Today, and they questioned her for several hours, at least for 6 hours, because the arrest was made at around 5:10 p.m. Today. And during Thursday's investigation, the CBI also carried out a detailed forensic examination at the residence using a high-intensity 3D camera. Officials conducted a 360-degree recording of the entire area and scanned nearby locations to assess whether the alleged incident spot was visible from neighbouring terraces or balconies or not. My colleague Tejshree is tracking the story very closely. He's now joining me. Tejshree, Giriwala Singh has been arrested after 6 hours of interrogation. Next up is, of course, she has a slew of allegations against her of tampering evidence, concealing evidence as well. But the next big step is that she'll be produced in front of the court in Bhopal today. Tomorrow, pardon me. Yes, please.
2: Well, yes, absolutely. What we are learning as... Yes, Raisha, what we are learning as of now is today she will also be not even taken for medical, in fact, and tomorrow the entire formal procedure will start where the medical will also be done, and then she will also be taken to the court so that CBI could take her officially into the custody. Now needs to be seen that what happens after CBI takes her into the custody, because important to note here is that CBI also highlighted the fact that yes, there is a possibility, you know, of hiding and tempering the evidence. So perhaps that is why it is important for them to interrogate Giriwala Singh, and perhaps that is why today a team of CBI in fact went to the residence of Giriwala Singh, where she was questioned for more than 6 hours. And as you have rightly mentioned, two eyewitnesses were also confronted. Not just that, but a proper technical analysis was also carried out there, which is also in fact known as a tunnel analysis, if we talk in the forensic terms. So here they in fact have captured the pictures of the inside and outside visuals about the movement, about what happened in between 10 p.m. to approximately 10:45 p.m. That last call that went from Giriwala Singh to Twisha's mother. They have taken the pictures, they have taken the videos. Now they will be joining all the pictures, will be creating a 3D virtual image, and then they will be matching it with the kind of statements that Giriwala and Samarth have given. They will also check whether the statements given by Giriwala and Samarth are in parallel lines or not. They will check whether she has deleted the chats, calls, WhatsApp messages. Proper scanning of the digital evidence is all likely to be done now.
0: Back right, on. Absolutely, Tejshree. Apart from, of course, there were allegations that Giriwala Singh tried to tamper the evidence, and the fact that she tried to use her influence of power in the ongoing case. But Samarth Singh has also been arrested by the CBI. He has been questioned for several days, and we, of course, came out with the statements that Samarth Singh made. But the next big aspect is also what you also mentioned, the comparison of statements when it comes to what Samarth Singh, Twisha's husband, says, and Giriwala Singh, Twisha's mother-in-law, says, which will also come under the scanner.

0: नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो रोज की जिंदगी का हिस्सा है लेकिन फिर भी अक्सर चुपचाप रह जाता है।
1: बिल्कुल आयुष्मान, जैसे ग्रीन डॉट हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है, वैसे ही आज हम बात करेंगे रेड डॉट की, जो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं डिग्निटी का सिंबल है। आयुष्मान,
0: ब्रेस फोकस इज सिंपल, फ्रॉम फियर टू अवेयरनेस एंड फ्रॉम अवेयरनेस टू डिग्निटी,
1: और इसीलिए आज का फोकस है रेड डॉट, डर से डिग्निटी तक।
0: May 28 is menstrual hygiene day, a day to break the silence and talk openly about periods.
1: क्योंकि जब बात health और dignity की हो, तो silence नहीं, सही बात जरूरी होती है। आयुष्मान, let's look at the data. Now, India has definitely moved forward and the data reflects this. NFHS 5 shows over 77% of young women between 15 and 24 now have access to hygienic menstrual protection, a major step ahead, which means accessibility ab is hygiene products ke Ayushman hai. However, the challenges are from over, particularly in rural and underserved regions. That's why UNESCO's findings highlight that the absence of menstrual hygiene facilities continues to affect girls' education and attendance across India and around the world. Ayushman, 28th May is Menstrual Hygiene Day. Ye sirf periods ki baat nahi hai, ye baat hai health, dignity aur right information ki. At the right time, वो और भी ज़रूरी है। लेकिन आज menstrual hygiene की conversation को थोड़ा और भी आगे ले जाते हैं, क्योंकि बात सिर्फ periods manage करने की नहीं है, बल्कि जो periods के बाद जो आयुष्मान जो waste बचता है, यानी कि menstrual waste, हम उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही एक और basic चीज़ को अक्सर ignore किया जाता है, जो menstrual hygiene या menstruation के time होता है, hand hygiene. Because when it comes to menstrual hygiene, clean products matter, but clean hands matter as much. और इसी connection को clearly समझने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी आवाज़ है जो periods को taboo नहीं, science, sense और confidence के साथ discuss करती है. I would like to introduce Dr. Tanaya Narendra. उन्हें popularly आयुष्मान Dr. Cutress कहा जाता है. वो एक doctor है, Indian sexual and reproductive health educator है, जो कई सालों से young girls और women को सही, ऑनेस्ट और जजमेंट फ्री इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे बात पीरियड्स की हो, हाइजीन की, या बॉडी लिटरेसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसकी हो. सो कैन वी प्लीज वेलकम डॉक्टर Cutress. इट्स रियली अ प्लेजर टू हैव यू हियर.
2: थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड आई एम सो ग्लैड टू बी टॉकिंग अबाउट पीरियड्स.
1: एंड वी आर सो ग्लैड टू हैव यू हियर, द राइट वॉइस हियर. आयुष्मान, व्हेन वी टॉक अबाउट पीरियड्स, आई थिंक लेट्स बिगिन विद टू अंडरस्टैंड. इट इज़ अ टबू टॉपिक अनफॉर्चुनेटली स्टिल. आई थिंक इफ यू कुड जस्ट टेल अस, what really are periods?
2: Okay, so how I always understand it is that this is the reason why I'm called Cutress, because uterus बड़ा ही cute organ होता है. हमें जब भी uterus के बारे में बताया जाता है, we are always told ये कोई you know साफ करने की जगह है, इसको detox करने की ज़रूरत है, but actually uterus is very cute. ये हमारा पहला घर होता है, and आपका uterus थोड़ा दादी अम्मा type का होता है. आपके uterus को obsession होता है to get pregnant. एंड उस प्रेगनेंसी के लिए हर महीने यूट्रस प्रेपरेशन करता है, एक लाइनिंग बनाता है अंदर, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम. जब प्रेगनेंसी नहीं आती है तो बॉडी उसको फेंक देता है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट अ पीरियड इज़. इतना ज़्यादा हवा बना हुआ है इतनी सिंपल बायोलॉजिकल प्रोसेस का, एंड वी नीड टू गेट ओवर इट.
0: डॉक्टर Cutress, प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन hand hygiene and women's health, especially during menstruation.
2: This is such an important question. I'm very glad we're talking about it, because hum period products ki itni baat karte hain, periods ke bare mein itni baat karte hain, aur ek simple conversation bhul jate hain hand hygiene ka. Jo hamara vagina hota hai, that is very susceptible to anything from the outside. Jaise hum aankh kabhi bina haath dhoye nahi chhoote hain, usi tarah hame vagina mein bhi, vulva mein bhi, jo external genitalia hai, usko bhi bina haath dhoye nahi chhuna chahiye, because iske bahut paas mein hota hai hamara urethra, which is your opening, jahan se urine bahar aata hai. And women ka jo urethra hota hai, wo bahut hi short hota hai. To iska matlab agar koi bhi infection bahar ki taraf hai, तो बहुत ही जल्दी वो इन्फेक्शन आपके ब्लैडर में घुस सकता है, जिससे बार बार यूटीआईज होते हैं, हम बहुत कॉमनली सुनते हैं रेकरेंट यूटीआई जिसे बोला जाता है. इसके अलावा बाकी इन्फेक्शंस भी होते हैं, अगेन इट्स द सेम एज टचिंग योर आई. एक म्यूकस मेम्ब्रेन है वजाइना, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शस डिजीजेस को, पैथोजेंस को अब्जॉर्ब कर सकता है, एंड वी ऑब्वियसली डोंट वांट दैट.
1: यू नो, बिफोर वी मूव फर्दर, डॉक्टर Cutress, इफ़ यू कैन हेल्प एजुकेट बोथ आयुष्मान एंड मी अबाउट, यू नो, वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स टुडे इन द मार्केट. पहले होता था एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, हमने देखा कि अब जो रिपोर्ट है NHFS 5 की, देर इज़ एक्सेसिबिलिटी. येस, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन प्रोडक्ट्स हैं. इंस्टेड ऑफ रूरल एरियाज में अभी भी प्रॉब्लम है, पीपल आर स्टिल यूजिंग आयुष्मान लीव्स, मड, वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन दैट. बट वॉट इज देयर इन द मार्केट, इफ यू कैन जस्ट क्विकली टेक अस थ्रू. ऑल्सो वी सी सम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, जैसे ये क्लॉथ पैड है, कई चीज़ें सस्टेनेबल हैं, तो अगर

0: हमें हमारे दर्शकों को बता दे little bit about the products and what women have today.
1: It's actually a great time to be alive right now because like you mentioned, अभी भी लोग पुरानी चीज़ें use कर रहे हैं but we've had so much growth in the past 10-15 years in the menstrual hygiene space. बहुत तरह के products आ गए हैं. External products हैं जैसे normal disposable pads जो हम सब ने use किए होते हैं, this is how we normally start. उसके अलावा आजकल आपके पास biodegradable pads भी आते हैं. तो because लोग menstrual hygiene के waste को लेके परेशान होते हैं, this is a great product because उसको आप compost कर सकते हैं. This doesn't stick around like plastic does for hundreds of years.
0: Landfill से हम उसको, you know, that waste we're saving it from going to the landfill, so that's the point.
1: Absolutely. So if you want to try more sustainable products, aur bhi cheeze hoti hain, but iske alawa ek period panty bhi hoti hai. This is basically, think of it like a diaper, but it's not as thick as a diaper, it's actually quite nicely shaped. And ye disposable product hai, to jaise agar aap aise area mein hai jahan pe aapke paas pad fekne ki dikkat ho ya aapko bahut heavy flow ho, aap isko backup mein pehen sakte hain. Kafi sare log ise use karte hain, it's very very handy. फिर आते हैं इंटरनल प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स जो हम अंदर भी लगा सकते हैं. जैसे हो गया टैम्पॉन, जिसको हम वजाइना के अंदर डाल देते हैं, वो ब्लड को अब्सॉर्ब कर लेता है. काफ़ी सारे लोग अगर नोज में ब्लीडिंग होने लगती है तो उसको भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं
0: एज अ लिटिल हैक. अब्सॉर्ब्स इट रियली वेल.
1: एब्सोल्युटली, इट्स सुपर अब्सॉर्बेंट, इट्स कॉटन, तो वो अच्छे से यहाँ पर ब्लॉक करके सारा एग्जिटिंग ब्लड को अब्सॉर्ब कर सकता है. उसके अलावा वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ वेरी हैपनिंग राइट नाउ इज मेंस्ट्रुअल कप्स. सो मेंस्ट्रुअल कप एक सिलिकॉन का डिवाइस होता है एंड ये बॉडी के अंदर जाके, वजाइना के अंदर जाके, यूट्रस की ओपनिंग पे ऐसे आके फिट हो जाता है. इट्स वेरी वेरी हैंडी एंड इससे बिकॉज ये बहुत लंबा चल सकता है, करीब 10 साल तक चल सकता है.
0: कैन यू इमेजिन इट, दिस इज सो मच वेस्ट यू आर एक्चुअली, you know, I mean they're saving the amount of waste to go to the landfill.
1: 10 years of menstrual waste aap bacha rahe hain ek chote se silicone cup se, and once you're done using this aap isko incinerate kar sakte hain, aap isko jala sakte hain, to trash nahi bachta hai.
0: Aage chalne se pehle main puchna chahungi, you know, is menstrual cup mein aapne kaha 10 saal, right? Iske liye hygiene aur bhi zaruri ho jata hai because it's an internal, I mean, you know, you're putting it inside. So iske hygiene ko kaise maintain kiya ja sakta hai?
1: बिल्कुल, एंड दैट्स अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट. इस वजह से लोग बहुत डरते भी हैं टैम्पॉन्स और कप्स यूज़ करने में, बिकॉज ये एक इंटरनल प्रोडक्ट है एंड लाइक आई सेड आपकी आँख की तरह है. तो आपको कभी भी कोई भी पीरियड प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ उसके बाद नहीं, उसके यूज़ करने से पहले भी, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग एन इंटरनल प्रोडक्ट, बिकॉज आप एक सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन में जा रहे हैं जो कि सब कुछ अब्सॉर्ब कर सकता है. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हैंड हाइजीन. आप हाथ यूज़ करने से पहले धो रहे हैं, यूज़ करने के बाद धो रहे हैं, एंड विद अ मेंस्ट्रुअल कप आपको इसको एक साइकिल खत्म होने के बाद इसको स्टेरिलाइज भी करना होता है विद हॉट बॉइलिंग वाटर.
0: वो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है,
1: बहुत जरूरी है.
2: डॉक्टर, क्यूट्रस इज सस्टेनेबल ऑल्सो हाइजीनिक, लाइक वॉट प्रिकॉशन शुड वुमेन टेक व्हाइल यूजिंग रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स?
0: खासकर अगर मैं, आई थिंक आयुष्मान, आई थिंक इफ आई कैन जस्ट यू नो टेक ऑन टू दैट, ये एक क्लॉथ पैड है तो सस्टेनेबल, यानी कि ये एक क्लॉथ क्योंकि बार बार यूज़ किया जा सकता है, राइट? यू यूज इट, यू वॉश इट अगेन, यू स्टेरलाइज इट, सो दिस इज वॉट वी आई थिंक मी सस्टेनेबल, राइट?
1: एब्सोल्युटली. एंड लोग अक्सर कपड़ा अगर सुनते हैं तो उन्हें लगता है पुराने ज़माने का आइटम है, ये साफ नहीं होगा, बिकॉज हमें यही बताया जाता है कि कपड़ा छोड़ो, पैड पे स्विच करो. सो कपड़ा भी बहुत यूजफुल है, यू कैन ईजिली यूज़ इट. इसके साथ ध्यान का रखना होता है कि जब आप इसको धो रहे हो तो वॉश विद कोल्ड वाटर, बिकॉज आप हॉट वाटर यूज़ करेंगे तो जो ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली इस पर चिपक जाते हैं. सो वॉश विद कोल्ड वाटर, डू अ फर्स्ट रिंस, उसके बाद आप इसको अच्छे से धोइए, साबुन से धोइए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इसको धूप में सुखाएं, बिकॉज इट्स लाइक योर ओन यूवी स्टेरिलाइजर, वो आपको अच्छे से इसको क्लीन कर देगा, एंड यू कैन यूज योर क्लॉथ पैड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम.
2: मतलब कम वेस्ट, बेटर हाइजीन, मोर रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस, सस्टेनेबिलिटी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, इज जस्ट अ स्मार्टर एवरी डे हैबिट.
0: That's so well put. In fact, also India हर साल 1 लाख टन से भी ज़्यादा menstrual waste generate करता है. Most disposable pads are biodegradable, यानी कि जो environment के भी अच्छा और health के भी. So is that true? जो sustainable product है, even if it's a biodegradable pad, which you know आज market में आयुष्मान बहुत सारे pads हैं जो biodegradable है, and we hear that while it's good for the environment, ये आपके body के भी it's better. Is that true or is that a myth?
1: So अक्सर जब हम plastic products use करते हैं वो जनरली मॉइस्चर डाउनस्टेयर्स थोड़ा ज़्यादा ही होता है, उसके ऊपर पीरियड का आप मॉइस्चर ऐड कर दीजिए, उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक शीट कवर कर दीजिए जिससे सारा मॉइस्चर अंदर ट्रैप हो जाए. ऑब्वियसली इट्स नॉट ग्रेट. हमारे इंडिया में फंगल इन्फेक्शन इतने ज़्यादा होते हैं, UTIs इतने ज़्यादा होते हैं, हैंड हाइजीन सही से मेनटेन नहीं होती है, उसकी टॉप शीट से इरीटेशन हो सकती है सेंसिटिव स्किन को. सो इट कैन येस क्रिएट प्रॉब्लम्स विद सम पीपल, विच इज़ वेयर दीज बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स आर वंडरफुल. दे कैन बी यूज आराम से, आप इनको बिना हेजिटेशन के यूज़ कर सकते हैं, एंड वंस यू आर डन यूजिंग दैम ऑब्वियसली डिस्पोजल इज मच ईजियर.
2: एंड डॉक्टर क्यूटर्स, हाउ सेफ इज द कप? इज इट रियली लाइक सेफ टू यूज?

0: His resident breaking image here on NDTV.
1: This is Breakfast 2.0 because this is a follow-up.
2: The muscle flexing in Bengaluru has begun all over again. The biggest news break that we've brought to our viewers, the Sarkara riddle is once again erupting in Karnataka.
3: Exclusive scoop on Karnataka Game of Thrones coming in.
4: Deepak Bhupanna is reporting that Siddaramaiah will resign. High command was in favor of a transition of power.
5: Mr. Siddaramaiah is going to relent and Mr. D.K. Shivakumar is expected to take over as the new Chief Minister of Karnataka.
2: Huge piece of breaking news that we as a team have been right about here on NDTV for the last few days, I might add.
6: D.K. Shivakumar's car has arrived. First pictures here on NDTV.
3: What is the CM formula that's going to be on the menu?
6: First pictures here of the hug between Siddaramaiah and D.K. Shivakumar. Breaking it as always, first and exclusive here on NDTV. Siddaramaiah has said this to all his cabinet colleagues over breakfast. He said, I have agreed to the High Command's recommendation that D.K. Shivakumar will be his successor.
7: So he was only willing to shake hands with us. He just looked at us. I asked him a question.
8: Chichi makes one thing very clear. The real change, honestly, really comes through education. Now, the Dettol Banega Swasth India curriculum is also being implemented in several schools across Trichy. Let's bring in Ravi Bhatnagar, Communications and Corporate Affairs Director, South Asia, MENARP and Africa. He's from Reckitt into the studio to understand what exactly children are being taught and how this education is driving lasting change. Ravi, welcome.
9: Hi again.
8: Hello. You know, we're having this very, very important critical conversation. We have with us Dr. Kutras, and she's explained us, I think, everything about menstruation, whether hygiene ki baat ho, hand hygiene ki important hai, kya products women ke liye available hai.
9: And jo Trichy mein hum dekh rahe hain, usme education aur curriculum ka role kitna important raha hai?
10: बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेसिकली जो त्रिची में जो मॉडल है डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया का स्कूल्स के अंदर कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी आयुष्मान जी जहाँ बच्चों को हाइजीन पढ़ा रहे थे वहाँ से त्रिची है तो पीटीएम्स भी होती हैं पेरेंट टीचर मीटिंग्स और पेरेंट टीचर मीटिंग्स में कुछ वुमेन जो हैं पेरेंट्स जो हैं वो बोलती हैं कि हमें भी ये सब कुछ करना है आपने हमारे बच्चों को बताया है अब हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे विलेज के अंदर लैंडफिल्स नहीं हो तो हमने कहा कि आप क्या सीरियस हैं इस पे वो बोलती हैं कि हाँ हम बहुत सीरियस हैं बोलती कि तो स्वच्छ भारत का भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रस्पेक्टिव है तो हमने कहा कि क्या करेंगे क्या सब पैड्स इकट्ठा करेंगे क्या करेंगे तो उन्होंने बोला नहीं हमारा एक कलेक्टिव है हम एक कलेक्टिव की तरह से हम काम करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अभी डॉक्टर क्रिटरिस ने बताया यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पैड्स का तो ये बायो जो ये आपका जो डिस्पोजेबल जो पैड्स हैं रीयूजेबल जो पैड्स हैं तो दे हैव स्टार्टेड मेकिंग दैट अमेजन पे अगर आप जाते हैं तो उनके 4.5-5 star रेटिंग है उन पैड्स का वही गाँव की महिलाओं ने बनाया हर बच्ची को वो पैड दिए हर एक के बैग में है एक पाउच है बहुत सुंदर सा उस पाउच के अंदर 5 पैड्स हैं और उसमें सब कुछ सिखाते हैं कि इसको ड्राई कैसे करना है इसको वॉश कैसे करना है सबसे इंटरेस्टिंग था जब मेरे पास में फर्स्ट टाइम वो मुझसे मिलने आई प्रीति दामोदरन जिन्होंने ये पूरा इनिशिएटिव लिया
8: अभी हमने त्रिची
10: जी तो जब वो मुझे पहली बार मिलने आई तो कुछ लोग जो है वो मिठाई लेके आते हैं कुछ लोग बुके लेके आते हैं फर्स्ट टाइम आई गॉट मेंस्ट्रुअल पैड का पूरा किट इन माई हैंड आई वॉज वेरी सरप्राइज ऑल्सो एंड वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो कि हाउ भारत इज चेंजिंग इट वॉज रैप्ड इन द ब्लैक पॉलिथिन्स एंड गिवन लाइक दिस इज समथिंग विच इज अ बिग टैबू फीलिंग अशेम्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम देयर टू जर्नी लाइक अ यंग इंडिविजुअल हु इज कमिंग सेइंग So good to meet you, Ravi, and you know, handing me over the pad and see, and then telling me like, what motivates her to do it, and we continued it.
8: Well done, Ravi. Well, I think before I move on, I would want to show you all, you know, when awareness, what Ravi just said about schools, when it enters the classroom, change follows. But let's understand how this curriculum of the Dettol Banega Swasth India is making a real difference on ground. Ravi has spoken about it, so let's go and see schoolon mein kya ho raha hai.
11: Ambika, we are here at the Government Higher Secondary School in Villadipatti in Pudukottai. Our girls are confidently owning their education. all has been made possible by Grammalia's effort of creating a period-friendly space for these girls, where they provide

0: safe water, privacy and incinerators. Not only this, the 715 students, both boys and girls who study here, they're provided with basic health and hygiene education. यहाँ की girls और teachers ने switch किया है cotton pads पे, जो कि बनाता है इस school को 100% menstrual waste free school. While infrastructure and switching to cotton pads is important, until and unless there is a behavioral change, no change is possible. And that is where Dettol Banega Swasth India comes into picture.
1: நான் வந்து டெட்டால் பனேகா ஸ்விஸ் இந்தியாவில் ஒரு 3 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது வந்து நாங்கள் அந்த 5 ஸ்டாண்ட்ஸாக பற்றி நான் சொல்கிறேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 5 ஸ்டாண்ட்ஸ் தன் சுத்தம், வீட்டில் சுத்தம், நோயின் போது சுத்தம், சுற்றுப்புற சுத்தம், பள்ளியில் சுத்தத்தை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். இதில் மெயின் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் சுகாதாரம். இந்த மாதவிடாய் சுகாதாரத்தில் இந்த வேளாடிப்பட்டி ஸ்கூலில் வந்து நான் நிறைய டைம் வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதவிடாய் சுகாதாரத்தை பற்றி சொல்லித்தரேன்.
2: நாங்கள் பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து எங்களால் ஸ்கூலுக்கு வர முடியாது, நாப்கின் யூஸ் பண்ணுறதுனால எங்களால் ஸ்கூலுக்கு வர முடியாது. ஆனால் வந்து பாதவி மேடம் வந்து துணி அணிய ஆடைக்கும் நாப்கின்க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை எங்களுக்கு புரிய வச்சாங்க.
3: கிராமாலயிலேருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா, பீரியட்ஸ் வந்து நமக்கு வெக்கப்படுற விஷயம் கிடையாது, அதை வந்து நம்ம வெளிப்படையாக இருக்கணும், அது வந்து நமக்கு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான். நல்லா பீரியட்ஸ் வரப்போ வந்து நம்ம யாரும் வெக்கப்படக்கூடாது, அது வரலன்னா தான் நம்ம கவலை பண்ணணும்.
4: We have so many activities for involving the children in hygiene education. We have school hygiene clubs with the students. They act as a hygiene ambassadors with the communities and their home. Through these steps, we have seen a very meaningful change, that is a reduction in the dropout rate and absenteeism rate on the schools, especially among girl children. So when a girl go through her menstruation with dignity, without polluting the environment or without missing her class, we are not just solving a hygiene issue, we are shaping a generation that is more healthier and confident. That is the future we are actually building with the support of Reckitt's Dettol Banega Swasth India program.
5: You know, we just saw the impact which has been brought on ground. I have a question, Dr. Cutrus. We have two men standing here, of course working for a cause. They are very integral part of the campaign. We're talking about menstruation. It is a taboo subject, but I think it's very critical here the role men play when it comes to normalize this conversation. Their fathers, their husbands, sons. How important is it for men, whether it's in our families, to really normalize the conversation?
6: Super, super important. हम जैसे ही इसको women's issue बना देते हैं, this is not a women's issue. This is an everybody issue. उसका जो plastic generate हो रहा है, उससे जो health issues आ रहे हैं, this is impacting the entire country, this is impacting the entire world. It's not just a women's problem, ladies वाली problem नहीं है ये. And it's super important to make sure this conversation is normalized. अगर हम उसको एक कमरे में बंद कर देंगे, खाली ये लड़कियों की बात है, तो कैसे normalize होगा वो? So I'm very glad we have men here talking about this topic that is usually considered taboo.
5: We have men here. आयुष्मान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने एक किरदार निभाया है डॉक्टर जी में, he's played the role of a gynecologist. We have the expert here as well. How was that experience?
7: My entire career is based on bringing on subjects which are uncomfortable,
5: yeah,
7: generally in our society. So taboo breaking is like my second job maybe, if not the first. I also believe that in that particular film, Dr. G, it was a journey from being a regressive person to being a super progressive person.
5: Mm.
7: And that's been the arc in most of my characters of my films. Usme pehla to taboo ye tha ki ek mard gynec nahi ban sakta. Phir dusra taboo ye tha, chote shahron mein aurte mard gynec ke paas jana nahi chahti. Phir uske baad ab main yahan par khada hoon, coming from an all boys school and all boys college. Gender sensitization mere liye bahut late tha. Aur aaj hum do mard yahan khade hain, कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे, आप हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं ये, सो आई थिंक इट्स अ बिग टर्निंग पॉइंट इन आर लाइव्स. इन फैक्ट तो हम चाहते हैं कि बाकी मर्द भी सामने आए, इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा हो, जाने इन चीज़ों के बारे में, इससे अनकंफर्टेबल फील ना करें इन कॉन्वर्जेशन को लेकर.
5: एंड आई थिंक दैट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज व्हाट वी टेक अवे फ्रॉम हियर, राइट? बट जस्ट वन लास्ट थिंग वी वांट टू आस्क यू इज व्हाट इज द राइट एज टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद योर चिल्ड्रन.
6: हम जब मैथ सीखते हैं तो हम डे वन पे बच्चे को एल्जेब्रा नहीं सिखा देते हैं. जब वो छोटे होते हैं हम उनको नंबर्स सिखाते हैं, फिर वो थोड़े बड़े होते हैं हम उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, फिर वो और बड़े होते हैं हम उनको लॉन्ग डिवीजन सिखाते हैं, फिर जब वो टेंथ में पहुँचते हैं तब उन्हें कैलकुलस समझाते हैं. सो आई थिंक एज अप्रोप्रिएट बॉडी लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक वन सिंगल कॉन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, एंड आई फील लाइक दिस इज़ वेयर वी मेक द मिस्टेक, बिकॉज हम इस तरह के, मतलब एक टुडे वी विल हैव द टॉक, अगर इस तरह के एटीट्यूड से आए, सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो जब बच्चे छोटे हों, उनकी उनको उनकी बॉडी के बारे में बताइए, उनके ऑर्गन्स क्या हैं, उनके क्या नाम होते हैं, थोड़े और बड़े हों तो हम उनको पीरियड्स के बारे में बता सकते हैं. सो एज अप्रोप्रिएट बॉडी लिटरेसी एजुकेशन इज अ कॉन्वर्सेशन टू हैव इन योर ओन होम्स.
7: आज रेड डॉट डर का सिंबल नहीं है.
5: बिल्कुल आयुष्मान, रेड डॉट एक रिमाइंडर है हेल्थ का, डिग्निटी का और रिस्पॉन्सिबल चॉइस.

0: दलाल लोग घूमते रहते हैं और कुछ प्रसाद मिलने के लिए वो लोग काम करते हैं। तो हमारे स्टेट भी इसमें एक्सेप्शन नहीं था, लेकिन जब उस भ्रष्टाचार को हमने एक प्रातिष्ठानिक रूप दे दिया कि पंचायत स्तर से सर्वोच्च स्तर तक ये भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है।
1: ये जो लोग अभी बयान दे रहे हैं ये कमजोर हैं, इसको ताकत नहीं है, नैतिक शक्ति नहीं है। जब पार्टी का समय खराब है तब पार्टी का खिलाफ बयान देना कोई महत्व का काम नहीं है, ऐसा देना नहीं चाहिए।
2: Slipping into a very quick break here, but don't go anywhere. Right after the break, we will tell you how Indian Air Force helped in dousing fire in Himachal's Kasauli.